इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आ

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

सांस है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। यह है कश्मीर, यह है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहां की शायरी को महसूस करना होगा। यहां की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहां की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहां की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहां की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा और जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फन पारे नहीं है बल्कि ये कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर 17

Cinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Cinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपके साथी आरजे ज़ियस। दोस्तों फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनाव के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। ऐप स्टोर से डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव स्टे हुक्ड मेरे यार, धड़काते रहो।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: Cámara.
1: Dios.
2: तो हॉट फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपका साथी जॉक्सिस। दोपहर से भाई बजे चुस बहुत स्टूडियो हरदोक पे आज तौजूद मतलब कचा कत मे दिल मैं तरने दोपहर तान मतलब दिलु हाल बा तह तान सोरे वातन तुंद वोनमुत सारे तान बोजन मतलब पे तूत रम गए यू अंडरस्टैंड दिस या आई नो इट बट पॉइंट इज कि रेडियो चैनल आर का जो व्हाट्सअप शो है मजदार व्हाट्सअप शो आप सुनेंगे 12 बजे तक तो मजदार बनाए तुम कित शोस मज हिस्स 8899-0404 इस 8899-0404 आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज डीएम भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो सर्च करें आईडी पर इनबॉक्स करके आप हो सकते हैं शो में शामिल।

0: मुझे जूस। कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: यहाँ दोस्तों रेडियो चुनार की हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर जो वायरल होता है वो सब पर आ ही जाता है। वायरल ऑन व्हाट्सएप जो ऐसा सेगमेंट जहाँ पर हम पहुँचाते हैं आप तक कि जहाँ भी वायरल रहता है। अब जो वायरल रहा वो हम आप तक पहुँचाएंगे। देखिए दुनिया में तरह तरह के स्कैमर्स तरह तरह के स्कैम किए जाते हैं, लेकिन स्कैम्स में से एक नया स्कैम जो पहुँचाना आप तक जरूरी है ताकि आप भी अगर चैन से सोना चाहते हैं तो जाग जाए। अब ये स्कैम है कुछ इस तरह से कि आप चल रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, बेलपुरी खा रहे हैं, मिर्ची किसी को लगी नहीं। ए भाई ना ना सुदाना, मिर्ची का कोई सीन नहीं, बल्कि ये होता है कि रास्ते में पैसे बड़े मिलते हैं। बंदा इंसानी फितरत नोट देखकर अपने होंठ उस तरफ घुमा लेता है और जब पैसे उठाने जाता है तो वहाँ पर पैसों पर लगा होता है एक फ्लूड, एक लिक्विड सा, जिसे इंसान अक्सर ये क्यों है मुश्क हवा सूंघने की कोशिश करता है और उसी टाइम हो जाता है स्कैम। उस लिक्विड से आपका दिमाग चकरा सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं और फिर ऐसे दिलंदोज वाकये पेश आते हैं जैसे किडनैपिंग या लूटा जाना या किसी के चेन वगैरह स्नैच कर ली जाती है, पैसे लूटे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वाकये जो हैं देखे गए हैं और तभी बताया जाता है कि ऐसे स्कैम से बचे। अगर आप गलती से पैसा उठा भी ले, जैसा कि मैंने कहा कि फितरत है इंसानी कि पैसे पड़े हुए देखते बट अगर लिक्विड वगैरह लगा हो आपके हाथों पर कुछ लग जाए पैसों से उठकर कुछ लिक्विड सा महसूस हो तो उसे सूंघे नहीं बल्कि जाकर उसे रिपोर्ट करे और हाथ वहीं पर धोले ताकि आप ऐसे स्कैम से बचे रहे। तो भैया ये था वायरल जो आ गया व्हाट्सएप पर। मैं हूँ जॉक ज़ूस, ये है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया रेडियो चैनल 90.4 FM। मेरी जान से रहो, डर कहते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माय सर्कमस्टेंसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माय डिसीजंस। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन से धड़कन।

दोस्तों रेडियो चैनल की हर फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो। सब मैं हूं आपका साथी आरजे अज़ीज़। ये मजेदार शो का हिस्सा बने हैं साकिब, लिखते हैं साकिब सर, श्रीनगर से हूं और ऐप के थ्रू आपके शो सुनता हूं। आज ऐप डाउन है तो क्या हुआ? देखिए दोस्त, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से जो है ऐप डाउन है, तो उस वजह से हम जो है ऐप पर अवेलेबल नहीं है, बट आवर टेक्निकल टीम इज़ ऑन इट एंड आई होप कि कुछ ही टाइम में ऐप जो है वापस रिस्टोर हो जाएगा। और वही यहाँ पर शमशेद हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं शमशेद सर, आपका शो अच्छा लगता है, सभी शोज रेडियो चिनार पर सुनता हूँ और चिनार बीट्स मेरा फेवरेट शो है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस इज्जत अफजाई के लिए। और आप कोई भी शो सुने, इट्स वन एंड द सेम थिंग एंड गॉड ब्लेस यू फॉर सपोर्टिंग अवर टीम फॉर लविंग बैक टू अस बिकॉज टीम रेडियो चिनार एंड वी लव यू ऑल। तो इतना ही, अपन का था इस्तेमाल नहीं था 8899 0049 0049।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन का रेडियो 90.4 FM आप DM भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सर्च करें ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो, या आप सर्च कर सकते हैं जॉक ज्यूस JOCKXUS। DM करके भी आप हो सकते हैं शो में शामिल। जी हाँ, व्हाट्सअप शो और व्हाट्सअप शो में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है, बट इट्स एज गुड एज बॉडी बिल्डिंग। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप अपने मसल को स्ट्रेंथ करते हैं, और वही अगर हम करें तो यथ कहिए बड़ी जिम का समझवाना। बट वॉट आर द बेनिफिट्स एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे मिसकनसेप्शन होते हैं, जिम से गसा हाइट छन बढ़ेनी, ये चुका हो चुका। देर आर थिंग्स विच वी आर सपोज टू नो, और सब चीज़ें रिलेटेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज डिस्कस की जाएगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है आज के मजेदार व्हाट्सएप शो का टॉपिक। रेडियो 90.4 FM और ये जिम वालों का फेवरेट गाना अर्जुन वेली ने तंपज भाई तुला 5 किलो डंबल्स जोक्स अपार्ट, ए लवली सॉन्ग फ्रॉम मूवी एनिमल। सभी सुनने वालों के लिए फुल ऑफ एनर्जी, वॉल्यूम पंप अप कीजिए, सबको सुनाइए, हर दिल की धड़कन है रेडियो चुनाव जोरों से धड़काइए। मैं हूँ जॉक्स, श्रेहक धड़का।

0: Zeus.
1: कौन आया?
2: Zeus.

और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप। दोस्तों व्हाट्सअप शो में आज बात हो रही है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एनर्जी नो। जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं टॉक अबाउट लिफ्टिंग वेट्स मे वजन वाल बट पॉइंट इज हमें यह समझने की जरूरत है दैट नो एक्सीडेंटल बल्किंग कैन बी बिकॉज ऑफ द लिफ्टिंग वेट्स। जी हाँ, आपके जितने मसल स्ट्रांग होंगे उतना ही फैट बॉडी से कम हो जाएगा। फॉर रेफरेंस अगर हम ये समझे कि अगर आप रनिंग वगैरह करते हैं या कार्डियो करते हैं टिल द टाइम यू आर डूइंग द कार्डियो योर बॉडी बर्न्स फैट, लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हैं तो अगले 24 घंटे तक मिनिमम आपकी बॉडी जो है फैट लॉस या फैट बर्न करती रहती है। अब ये नहीं है कि आप वेट्स वगैरह जिम में ही पा सकते हैं, बल्कि यू कैन परचेज हिम, यू कैन कीप अ मिनी जिम एट योर होम और जब मन करे वर्कआउट स्टार्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं आकिब, इनका नाम, कहते हैं सर आप जिम कब जाते हैं? देखिए दोस्त, फॉर मी इट्स नेवर लाइक शाम को जाओ और शाम को ही पर्टिकुलर आई चूज द डे टाइम। अक्सर मैं दोपहर के टाइम पर ही जिम जाता हूँ बिकॉज उस टाइम जो है बॉडी फुल स्विंग पे होती है, हार्मोन्स आर अप और शाम का ये है दैट मैक्सिमम ऑफ द क्राउड हिट जिम इन द इवनिंग बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल्स। बट माई पॉइंट इज के जब आपकी बॉडी रेस्ट की तरफ लौट रही है उस टाइम बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देना इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो आई चूज टू हिट द जिम व्हेन आई एम फुली एक्टिव एंड दैट्स मोस्टली आफ्टरनून्स।

थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए आगे भी, और यूं ही जुड़ते रहे और अपनी बात हम तक पहुंचाते रहे। अभी हमारे साथ जुड़े 8899-04904 इज द नंबर, और वही अगर हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका फैट लॉस बूस्ट होता है, और उसके साथ साथ एक फैट कंट्रोल, एक डिसिप्लिन आपकी बॉडी में आ जाता है, बोन्स डेंस होते हैं, जॉइंट्स स्टेबल होते हैं, आपका ब्लड शुगर मैनेज हो जाता है, हार्ट फंक्शन जो है इम्प्रूव हो जाता है, मेंटल वेलनेस, ब्रेन पावर जो है इंक्रीज हो जाती है। These are the benefits. अगर हम गिनाने पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको नहीं देती। बस ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको म्यूजिक नहीं दे सकती, और वो देता है रेडियो चनार। जी हाँ, इंटरटेनमेंट का डोज एवरी रोज। आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04904 इज द नंबर। अगली पेशकश I Feel Good, it's a show dedicated to the lovers of Western music, कुछ ही देर में हम पहुंचाएंगे आप तक, and just stay hooked to the hottest frequency and I'll see you on the other side. धड़काते रहो जॉक्सिस के साथ, रेडियो चुनाव मेरी जान, सही है मेरे यार।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक
0: वादिये लोलाब के

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
1: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: आरजे ज़ूस

जी हाँ, ये जो यारी है आपकी और मेरी, ये लड़खड़ाने लगी, ये ऐसी यारी है जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हमारा बॉन्ड ही इतना स्ट्रांग है जो 12 से 2 तक रुकने का नाम नहीं लेता। 90.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीट्स का।

Beats on repeat, show Chunar Beats. आप enjoy कर रहे हैं on radio Chunar 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक, fun, entertainment और entertainment के अलावा ढेर सारी information आप तक पहुंच रही है. Well, I do super excited हमेशा की तरह की बहुत सारी बातें करनी है and especially मैं अकेली नहीं होती, मेरी पूरी vibe और tribe मेरे साथ होती है. आई एम ऑलवेज की तरह वो excited कि भैया क्या चल रहा है कि, और हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिलता है. सोशल मीडिया की बात करें, हर दिन ही कोई नया ट्रेंड, अभी मीम कोई आया होता है तो हम बस उसी चीज़ में लग जाते हैं. अब कश्मीर में भी अगर हम देखें ना, हर दिन ना कोई एक ऐसा ट्रेंड या मीम बन जाता है ना, लोग फिर बता नहीं क्या क्रेज हो जाते हैं उस चीज के पीछे. तो ऐसे क्रेजी बन के लिए हम और बड़ी क्रेजी बन जाते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम भी जाने कि आखिर कैसे है आपके हालात, जज्बात और ख्यालात. सो क्या है आपके जज्बात और क्या आप शेयर करना चाहते हैं, क्या है वो थॉट्स, क्या है वो चीज़ें जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सुबह का क्या एक्सपीरियंस या समथिंग यू रियली वांट टू कन्वे, आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे वो चीज़ें जो आपको लगता है कि सोसाइटी में सही नहीं हो रही है, आप में सच में कुछ सवाल है या जवाब मांगना चाहते हैं और आप अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनाव की आवाज़. तो बस नंबर है जो कि आपको हमें जोड़ के रखते थे 8999049049 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो कैसे बन जाए, शो चुनार बीट्स की गाड़ी और आप है सवारी. और आपने बस क्या है कि आपने कस के सीट बेल्ट बांधनी है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं और जाना तो कहीं है नहीं क्योंकि आप है तो कोई और चीज़ मुझे मज़ा नहीं आता है. तो मैं हूँ, आप ये मौका है, दस्तूर है, कहाँ जाने का हुजूर, शो का हिस्सा बन जाइए और शो में मेरा साथ दीजिए. जी हाँ, एक ऊंचा लम कद, क्योंकि ये फीवर ना रुकने का नाम नहीं ले रहा. इट्स ऊंचा लम कद फीवर फॉर एवर एंड वी आर playing the song for you from the movie Welcome to the Jungle. और इस पे क्या different है मुझे पता है कि इसमें मैं कटरीना जी नहीं दिखाई दे रही है अक्षय कुमार के साथ, बल्कि दिशा पाटनी है. और आपके लिए तो हमने बैक टू बैक सॉन्ग्स भी रखे हैं.

हम तो सुन रहे हैं आपके गला, और इन गलों में हमारे लिए क्या है, इन बातों में क्या रखा है आपको और हमारा प्यार। हम चाहते हैं गल करें हमारे मेरे लाल, और यूँ ये साथ हमारा बना रहे हैं और आपके लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो चैनल 90.4 FM, क्योंकि ये है दिल की दरगाह।

Beats with Harshadeva on Radio Channel 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनाव बीट्स अब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है एंड वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और आपको बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे 2 वे ट्रैफिक अलो किया जा रहा है. आज भी आप आराम से जम्मू से श्रीनगर आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. बी केयरफुल, बी कॉशियस, क्योंकि इस रोड पे हमें पता है कि दिक्कत आनी अगर हम ओवरटेक करें गलत जगह पे, और अगर हम ये सोचें कि हम हीरो है बड़ी ओवर स्पीड में गाड़ी चलाए. ठीक, इस रोड पे हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है. एंड जो हमारे पास गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही हमने अपना जो डेस्टिनेशन प्लान है वो बनाना है. टू वे है, वन वे है. सो फिलहाल के लिए इट्स टू वे, आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, और सीट बेल्ट लगा के खासकर गाड़ी चलानी हम सब ने. एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे कंधों पर जिम्मेदारी होती है, उसे निभाना है. हमें ड्राइविंग के स्पीड को फॉलो करना है, हमें गलत जगह पे ओवरटेक नहीं करना है, हमें अपना और अपनों का ध्यान रखना है. और हमारा फर्ज है कि हम आप तक से जानकारी पहुंचाएं और आप सेफ और सिक्योर रहे. एंड वी केयर फॉर यू, वी मीन इट. एंड हम आप तक से इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं. फिलहाल के लिए आपका क्या है कहना रिलेटेड टू ट्रैफिक, रिलेटेड टू एनी एक्सपीरियंस आप जब ट्रैवल कर रहे थे, या कोई ऐसी मैसेज आप हमारे सुनने वालों तक पहुँचाना चाहते हैं, 8999049044 पर कॉल टेक्स व्हाट्सएप कीजिए. शो कैसे बन जाइए.

देखिए, हंसी सबने तो बरकरार रहेंगे जब हमारा एफर्ट सही रहेगा. सो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर सोसाइटी. सही मैसेज दीजिए, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को. Only on Radio Chunar 90.4 FM. मैं उदी बात सुन रही हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, Radio Chunar 90.4 FM. हर दिल की धड़कन.

Star Beats with Dr. Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

Beats with Archie Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar Beats. I've enjoyed it only on Radio Chunar 90.4 FM. Day Sari Baati Uri, and we are talking about right now plastic free lifestyle. Why it is important, what's the need of that, effects change, and definitely plastic free lifestyle se hamari zindagi mein kitni change aa sakti hai, hamari health kitni better ban sakti hai, hamara environment kis had tak bach sakte, because World Environment Day bhi aa raha hai 5 June ko, and Radio Chunar pe bhi hum campaign chala rahe hain, jispe specially we are talking about ki kaise hum apni environment ko bacha sakte hain. Abhi hum ek din ke tehte isko nahi manana, humne sach mein humne change lani hai apne environment mein, aur wo tab aayegi jab hum sach mein kuch efforts jo efforts se wo lagayenge, specially jise paid kaatna. I don't think so ki hame paid kaatne chahiye, kyunki hamare paas itke jo hamara mahol hai, hawa hai, jo pani hai, so ye cheez जितनी साफ़ रहे उतने ही हम ह्यूमंस के लिए वो अच्छी चीज़ रह सकती है. अब अगर हम ही उसे काटते जाए, हम ही पानी को कंटमिनेट करते रहे, और वो हम हमारे घरों में वो पानी आता है, फिर हम वही पानी पीते, और हम ऐसा लगता है कि स्पेशली जब हम नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं, झेलम हमने देखा है वो कितना कचरा हम लाते घर से उसमें फेंक देते, ये समझ के गई थी कि पानी में जा रहा है, लेकिन ये पानी तो हमारे घरों में आता है. व्हाट इफ वो जो प्रॉब्लम्स है वो बड़े, और यही कंटामिनेटेड वाटर हम अपने ही बच्चों को दे रहे पीने के लिए, सो उससे बीमारियां बढ़ रही, और हम कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं कि इससे हमारे हेल्थ के हद तक इम्पैक्ट हो रही है. सो प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल पर बात हो रही है, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को साफ रखेंगे, कैसे प्लास्टिक का यूज़ कम करके हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, इस पर बात हो रही है. आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, 8899049046 व्हाट्सएप कीजिए, और शो चुनार बीस का हिस्सा बन जाए.

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है

0: और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar Beats up, enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM, and we are talking about plastic free lifestyle. Why it is important, and we forgot sometimes ki hum us jagah pe hai jahan par nature jo hai, natural resources jo hai, ye hamare liye kitne zyada keemti hai aur inka khyal rakhna hum sab ki zimmedari hai. But na jane kyon hamari lalaj jo badhti hai to hum sochte hai ki theek hai ji, ye to hamare paas unlimited hai aur ise hum jitna use karenge utna ये हमारे पास बचा रहेगा. बट अभी ऐसी सूरत हाल है कि अभी जितना हमारे पास है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं. हम मुझे लगता है कि कम ही अब इन चीज़ों को देख पा रहे हैं. एंड इट्स बिकॉज ऑफ आस, हमने इसको इतना ज़्यादा ख़राब किया, इतना ज़्यादा हमने इस पर लापरवाही बरती कि हम इन चीज़ों को खो रहे हैं, ये हमारी लाइफ से दूर जा रहे हैं. एंड ये इसमें हमारा ही हाथ है, एंड इसका ख्याल, इसका सोल्यूशन भी हमने ही निकालना है. सो दिस इज़ अ हाई टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमने एफर्ट्स लगाने, हमने अपने जो माहौल है इर्द गिर्द, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ सुथरा रखना है. हमने ट्राई करनी है कि हम प्लास्टिक, जो कि हमारी ज़मीन को बंजर बनाती जा रही है, कहीं ना कहीं प्लास्टिक से जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, हमारी हेल्थ जो ख़राब हो रही है, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स की वजह है ये प्लास्टिक. स्टिल वी आर यूजिंग दैट, स्टिल वो हमारे इन्वायरमेंट को कितना ख़राब कर रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है. सो इस चीज़ का ख्याल कौन करेगा? हम ह्यूमंस, क्योंकि हमने इस चीज़ को क्रिएट किया है और हमें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हमें पता है कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है. सो हमने अपना लाइफ स्टाइल बेटर बनाना है. एंड इट्स आई गेस हम अगर नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा हमारे लिए, हमारे एक्शन से ये चीज़ चेंज होगी और हमने इस चीज़ को करना ही है. तो आप भी अपनी लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं, प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को सेफ सिक्योर कर सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए. आपका क्या है कहना? 8899-0494 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो का हिस्सा बन जाए, आप सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM.

देखिए सवालों का जवाब तो यही है कि अभी टाइम खत्म हो चुका है शो चुनाव 20 का म्यूजिक ऑन डिमांड शो आप एंजॉय करिए बराबर 2 बजे तक एंजॉय कीजिए ये पहला ट्रैक मेरे सवाल जी हाँ ईशा की आवाज में आप ट्रैक एंजॉय कीजिए ढेर सारी बातें और आपकी फेवरेट ट्रैक्स आप सुनेंगे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 91.4 FM

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

गई आ गई आ गई, और जिमी तो नहीं बल्कि मैं आरजे असरा आ गई हूँ। शो हंगामा शुरू हो गया है और बराबर चलता चलेगा ये शो। शो शुरू हो चुका है हंगामा, जहाँ ड्रामा, एंटरटेनमेंट, अब क्या बाजिंग है, और इसके साथ साथ लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच मिलता है जो कहीं और नहीं होता, और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी। देखिए मैं तो आ गई हूँ, बस आपके आने की देरी है। 8899049904 इज अ नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। और अभी कुछ ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे कि क्या है ट्रेंडिंग, उसके बाद रेलवे अपडेट्स है, वन मिनट फैक्ट है, आज का टॉपिक है गेम ऑन है, बहुत कुछ है। यहाँ सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। हंगामा ड्रामा, और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि क्या है ट्रेंडिंग, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, और लोग कौन से मीम्स, कौन सी रील्स शेयर कर रहे हैं, और लिप सिंकिंग, डांस रील, जो कुछ भी सोशल मीडिया पे हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है ही जहाँ पे कुछ भी ट्रेंड कर सकता है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कुछ नया होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरानी होती हैं, बट उनमें वाइब भी ऐसी होती है कि लोग कहते हैं कि वाह भाई वाह, क्या चीज़ बनाई है। और ऐसी ही चीज़ हुई है बहुत साल पहले बनी हुई मूवी डेली बेली, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट जो लोग जानते हैं वो पसंद ज़रूर करते हैं। और ये जो मूवी है, ये दिस वॉज प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान, एंड वी ऑल नो आमिर खान का जो क्रिएटिव विजन है, क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी जो बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। और अगर डेली बेली की बात करें, दिस इज़ द कल्ट फेवरेट मूवी, एंड ऑनेस्टली अगर ज़िंदगी में एक बार डेली बेली देखना तो मांगता है बॉस। So right now on internet everybody is revisiting Delhi Belly movie. सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसकी म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं, और इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी फनी भी है एंड बहुत अनप्रडिक्टेबल भी है। और सबसे बड़ी बात, जो इस मूवी के डायलॉग्स हैं, ओ माई गॉड, दे आर द लाइक बेस्ट एंड पर्सनली फेवरेट। एंड अगर बात करें सबसे जो फेमस डायलॉग है इस मूवी का, दैट इज़

देखिए आपके जज्बात तो मैं समझ चुकी हूँ और यही कहना चाहते हैं, मैं जानती हूँ आई नो आप यही कहना चाहते हैं कि आप रेडियो सुनार से कितना प्यार करते हैं, आप कितना पसंद करते हैं रेडियो सुनार को। 9994904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर आप अपना प्यार हमसे जाहिर तो कीजिए यार। मैं हूँ अस्ट्रा, शो है हंगामा, मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

0: जेसियस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हाय, मैं हूँ अश्रा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और अभी वक्त है रेलवे अपडेट का, और अभी की अपडेट ये है कि हर कोई ट्रेन इज शेड्यूल्ड बाय द समर टाइम टेबल एंड यू कैन अवेल द समर टाइम टेबल एंड द ट्रेन्स बिटवीन द स्टेशंस होल लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन्स थ्रू द ऑफिशियल ऐप ऑफ इंडियन रेलवेज, दैट इज रेल वन। और देखिए, जो गाना आप अभी सुन रहे हैं दैट इज द लेटेस्ट फ्रेश ट्रैक रिलीज बाय सुनंदा शर्मा, गाने का नाम है जोगी। और देखिए, ऐसे ट्रैक हो तो मजा नहीं आएगा कि कैसे हो सकता है। एंड सुनंदा शर्मा इज नोन फॉर वेरी पंजाबी पॉप, बट शी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट इन पंजाबी पॉप कल्चर एंड आई होप यू लाइक इट। एंड अभी एक और बात है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर जो रेलवे स्टेशन है 10-15 मिनट पहले ही पहुंचे ताकि इट विल बी फीजिबल फॉर यू और कोई भी डिले आपके प्लान में नहीं हो। मैं हूं अश्रा, शो है हंगामा। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार, क्योंकि एड फ्री म्यूजिक का वादा देता है रेडियो सुनार सबसे ज्यादा।

हाय, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और देखिए, हमेशा हम आपके लिए कुछ बेहतर, सोसाइटी के लिए बेहतर, एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन भी, एंड एवरीथिंग इज़ ओवर हेड। बट जैसे कि अभी रेडियो चुनार पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए कैंपेन चल रहा है, दैट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 5th of June 2026। बट हम इस पूरे हफ्ते से इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, और ये एनवायरनमेंट हमें ज़रूरत है, इस एनवायरनमेंट को हमारी ज़रूरत नहीं। अगर ह्यूमंस वर नॉट इन दिस वर्ल्ड, इन ऑन दिस अर्थ, शायद ये एनवायरनमेंट जो है, जो ये प्लानेट है मदर अर्थ, हमारी जो ये कुदरत है, ये और ही ज़्यादा बेहतर होती है। बट हमारी वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ ऐसी नासमझ चीज़ें कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है,

हमारा जो प्लानेट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो ख़राब हो जाता है. सो दिस इज़ द हाई टाइम. एंड इस पूरे हफ्ते वी आर टॉकिंग अबाउट इट अंटिल जो 5th of June वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके बाद भी इस बारे में बात हो गई, क्योंकि यही है जिसके लिए वी आर लिविंग, बिकॉज हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है. और मेरे साथ एक लिसनर जुड़ी थी, उनका नाम साइमा है, जो सोपोर की रहने वाली है. उन्होंने कहा है कि बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अगर इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, यानी कि पूरी जो दुनिया के जो भी क्रिएचर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस जिसके पास होती है, दैट इज़ ह्यूमन, तो ज़रूरी है कि हम उस कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करें और हम इस मदर अर्थ को बचाएं. मैं वसरा, आप भी अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं. मैं वसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और देखिए, हमेशा हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है और हम पूरे घंटे उसके बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है, लोग अभी क्या सोचते हैं और इससे पहले क्या सोचते थे, और जो भी थीम्स, जो भी सब टॉपिक्स रहते हैं उस बारे में, जो भी कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में बात होती है। और आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। देखिए, जितना जितना समर्स आ रहे हैं, जितना जितना वो मौसम समर्स की तरफ बढ़ रहा है, और अगस्त, जुलाई, जून, ये सारे जो मंथ्स हैं, दीज आर नोन फॉर शादी के लिए ना, स्पेशली अगर देखा जाए कि बहुत ही ज़्यादा वो शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रेशराइज़ किया जाता है और बोला जाता है कि भाई अगला नंबर तो तुम्हारा ही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैरिज एंड सोसाइटल प्रेशर की। कैसे आपकी वो बुआ जी हमेशा आपको हर शादी में बोलती है यू आर नेक्स्ट और आपकी शादी होनी चाहिए या वैसा कुछ, लाइक व्हाट आर द कैटेगरीज, व्हाट आर द यू नो वो स्टैंडर्ड क्या है कि कब हमें शादी करनी चाहिए, और अगर कोई शादी नहीं करना चाहता तो उसके लिए सोसाइटी के पास व्हाट इज देयर टू ऑफर। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मैरिज के बारे में एंड हाउ सोसाइटी प्रेशराइजेज अ लॉट ऑफ पीपल, और कहीं ना कहीं जब आपकी एज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, यानी कि इफ यू आर इन योर 20s, तो ज़रूरी है कि आप दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, कभी ना कभी तो सुनेंगे कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। और ये आपका डिसीजन नहीं होता बल्कि पूरे ख़ानदान का डिसीजन होता है कि आप किससे शादी करेंगे, क्या करेंगे। और स्पेशली अगर हम लव मैरिजेस वर्सेस अरेंज मैरिज की बात करें, तो अभी के टाइम पे इट हैज़ बिन सीन कि कैसे जो भी मैरिजेस लास्ट कर रही हैं वो एक्चुअली लव मैरिज है। क्यों? क्योंकि वो दोनों इंसान एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि बहुत सारी डिफरेंसेस होती हैं बिकॉज यू डू नॉट नो इफ़ यू आर जेन्युइनली कंपैटिबल टू द गाय। और हमारी शादी हो रही है पर इसके अलावा, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अलावा, सबकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है। चाचा, ताऊ, फूफी, फूफा, सब, लाइक आई कैन थिंक ऑफ एवरीबडी जो भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है। और स्पेशली अगर हम कश्मीरी फैमिलीज की बात करें तो एक इमोशनल अत्याचार तो ज़रूर होता है कि भाई आप शादी कर लेनी चाहिए, तुमको शादी कर कुछ कर काम आई गेस आँख नौश आसन, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि एक, एंड आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पेट्रियार्की से जुड़े हुए हैं कि कैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक आदमी शादी कर ले। और अगर एज डिफरेंस भी काफ़ी है तो उम्र की छोटी लड़की भी आप शादी करके ले आओ, एंड आप उसके एम्बिशंस को ना देखो, कंपैटिबिलिटी को ना देखो। और स्पेशली अगर अभी की बात करें शादियों की, तो जो डोवरी सिस्टम है, डावरी सिस्टम को एबॉलिश करना, इसके बारे में भी बात करेंगे पर कुछ ही ट्रैक्स के बाद। अभी के लिए बस इमोशनल अत्याचार से जो याद आता है वो बस ये है।
1: तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: और हम ये भी सीखेंगे आज कि कैसे हम इस जो प्रेशर है इसको कूप अप कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स को स्पेशली, बिकॉज वी आर आंसरेबल टू आवर पेरेंट्स एंड टू आवर सेल्फ, तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं, हमें एक क्लियर बाउंड्री कैसे सेट करें कि अभी मुझे और काम है, अभी मैं और पढ़ना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, उसके बाद शादी का सोचेंगे, क्योंकि शादी इज़ नॉट द एंड गोल, लिविंग फॉर योर सेल्फ इज़।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा हो जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लगदी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि ये कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा है।

0: मेरे हानिया मेरे दोस्ता मैनू जानदे वेख ली सारी उम्र ना खड़िया नाल मेरे मेरा सेवा तो सेख ली
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
2: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम और बराबर चार तक आपका और मेरा साथ रहता है और अभी चार बजने वाले हैं। और अगर आज ये साथ खत्म हो रहा है तो कल वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन। ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम शो है हंगामा। आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते बस यही कि अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और मेमोरीज बनाते रहिए। मैं हूँ असरा, शो था हंगामा, आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ Today, over and out. Love, love, love.

Chinar Beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम। The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: Chinar Beats with RJ Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner, TRK News Kashmir, Nasha Mukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official Radio Partner, Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। यह है कश्मीर, यह है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहां की शायरी को महसूस करना होगा। यहां की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहां की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहां की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर

ये सिर्फ फन पारे नहीं है बल्कि ये कश्मीर की लाजवाब सकाफत और विरासत की अक्कासी करते हैं। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तकलीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दूं बस समझ जाओ।

0: कष्टी जी
1: चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली खेलेंगे

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुँचे थे हम?
1: पश्चिम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात
2: पांच
1: लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: सार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: खाऊंगी शोर बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

0: दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

0: तने प्यार हो गया।
1: ओ मनु तेरा हुआ अब मेरा।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना।

याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।